0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब व्यापनी खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। मौसम संबंधी पूर्व सूचना है ध्यान में दई के काम करना मौसमविद के नागरिक उकरण आग्रह। कैलाली के तटीय क्षेत्र के पालिका में पूर्व तैयारी में जुटला। सुदूर पश्चिम सेना के हेलीकॉप्टर सहित पेपर प्रति कार्य के तैयारी अवस्था में वर्षा के समेत भारी वर्षा के संभावना रलक ओसे सतर्कता होना कैलाली के तमाम निकाय बीच छलफल। शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आयोजन के में सहयोग करती सहयोग पायल पाछ उपभोक्ता हुकरा खुशी। कैलाली के डल्फिन क्षेत्र में डल्फिन की गणना हो आहार के सर्वे करगिल। पूरा खबर। हाल देशभर मनसूनी वायु के साथे पश्चिमी वायु के फिर आंशिक प्रभाव रहल बा। साथे बंगला के खाड़ी के दिऊ चापीय क्षेत्र में हाल पश्चिम मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिम बंगला के खाड़ी में करगिल न्यू चापीय क्षेत्र के रूप में रहल बा। कल से आगामी दिन में थप शक्तिशाली बनाई थी समेत पश्चिम उत्तर ओलंग दिशा में समेत सर्वे करना शर्ती रलक देख गिल बा। हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलती बा। कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लेके मध्यम पानी पड़ती रहल बा। गैल 12 घंटा मध्य नेपाल में पाल्पा अर्घखाँची कपिल वस्तु कास्की रूपंदेही लगायत की क्षेत्र में भारी पानी पड़ल बा। गल से पाल्पा और कपिल वस्तु में गैल 12 घंटा में 132 मिलीलीटर वर्षा मापन करगिल बा। शुक्रवार से लेके असोज 11 गते सम अटवार सम गंडकी औसक लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्यांग हावाहुरी सहित भारी से भारी वर्षा तथा एक दो स्थान में अति भारी पानी पर्न संभावना देखाइती रहल बा। साथ ही मध्य प्रदेश तथा कोशी बागमती सुदूरपश्चिम प्रदेश के ढेरी स्थान में फिर मेघगर्जन चट्यांग सहित हावाहुरी सहित के भारी से लेके भारी वर्षा रलक कर्णाली प्रदेश में फिर समेत कम स्थान में भारी वर्षा समेत के संभावना रहल। विपद हरिप्रसाद दाहाल जानकारी दिलबाटे भारी से लेके अति भारी पानी पर्न अनुमान समेत पूर्वानुमान करगिल ओरसे वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्र के भूछे औसतक बार पहिरो तथा गेगनान बहाव के समेत जोखिम रलक। शहरी तथा तराई क्षेत्र में दुवान की जोखिम रहल ठाव तथा छोट लदिया नाला और समेत खोलवा में पानी के सतह बढ़ सकना देख गिल बा। स्थान में दैनिक जनजीवन कृषि स्वास्थ्य पर्यटन लगायत के लदिया क्षेत्र आसपास में निर्माण काम समेत सड़क तथा हवाई यातायात में समेत प्रभावित हुई सकना रलकोर्से आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तैयारी अपनाइना हुईना समेत मौसमविद दाहाल से सकुजहन अनुरोध करगिल बा। मौसम पूर्वानुमान संबंधी सूचना पायल पासे कैलाली के तटीय क्षेत्र के पालिका पूर्व तैयारी में जुटल बा। यहां टीकापुर जानकी और भजनी लगायत के पालिका के नागरिक उकरण सूचना देना नाला सरसफाई जैविक तटबंध निर्माण उद्धार सामग्री तैयारी अवस्था में काम में जुटल बताइल बा। 3 दिनसम देश के तमाम स्थान में भारी से लेकर अति भारी वर्षा अनुमान करगिलक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फिर समेत एकर बारे में समेत सजगता अपनाइटी विपद प्रति कार्य के लाग सरकार वाला संयंत्र तैयारी अवस्था में धरगिल बा। संभावित बरसात में समेत उच्च जोखिम रलक बझांग बाजुरा दारचुला आसाम में उच्चता सतर्कता अपनाइना अलर्ट समेत जारी कर सकल। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अटरिया के निमित्त प्रमुख संजय कुमार शाह जानकारी दिले बाटे नेपाली सेना से फिर सुदूरपश्चिम प्रदेश के विपद प्रति कार्य तैयारी करना करगिलक जनागिल बाकल से प्रभावित नागरिक उकरण के उद्धार तथा राहत के लक सेना से समेत सुदूरपश्चिम पृथनामा हेलीकॉप्टर मन से समेत तैयारी अवस्था में धरगिल बतागिल बा। कैलालीमा भारी वर्षा हुइसक्ने सम्भावना हल्कहटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली से सम्बन्धित निकाय होकरण उच्च सतर्कता अपनाइन आग्रह करलबा। कालिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा तमाम सरकारवाला निकाय हुकन बीच हुई छलफलमा जिल्लाकै तमाम क्षेत्रमा बाढ़ तथा दुवानके जोखिम बढ़सक्न कहटी पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाइना निर्देशन दैगेलबा। कैलालीमा मुख्य कर्के कर्णाली ओ समेत मोहना लदिया तथा इनके शाखा लदिया ओ समेत खोलवामा पानी के बहाव बढ़सक्न रलकोर्से जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समयमै सूचना प्रवाह जनचेतना अभिवृद्धि करना प्रशासन से जोर दैगिलबा। कैलाली के प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी से संभावित जोखिम है मद्देनजर करते सुरक्षा निकाय स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि तथा संबंधित निकाय से समय में नागरिक हुकरण सचेत कराई पर्ना बटवागिलबा। जोखिम क्षेत्र में अलग नागरिक हुकरण सही हो विश्वसनीय समेत सूचना समय में पुगैन आग्रह करगिलबा। उच्च जोखिम के संभावना है समेत ध्यान में धरती बाढ़ प्रभावित हुईसेना क्षेत्र समेत आवश्यक जनशक्ति उद्धार सामग्री तथा पूर्व तैयारी के व्यवस्थापन करना सम्बन्धित निकाय निर्देशन दैगिलबा। पाछक समयमा रसुवा लगायत के क्षेत्रमा आयल बाढ़ से समेत रलक क्षति के कारण सर्वसाधारणमा त्रास बढ़ उल्लेख करती प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी फे सम्भावित जोखिम समेत गंभीरता के साथ लेना आग्रह करगिलबा। खोज खरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह भी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
3: अब टीकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
1: यही असोज 10 गते शनिबारका दिन
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
1: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको पुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या, लाटो र पुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ। डाक्टर आउने दिन यही असोज 10 गते शनिबार।
3: स्थान मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9846774417।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागरजी हे राजनीतिक दल हुकरा दबाव देहलबाट कार्यवाहक के कुर्सीमा बैठ के पाछे कि काम गर पर्दा कि कुर्सी छोड्न कहती राजनीतिक दल हुकरा दबाव देहल कि हैं आर्थिक वर्ष ओराइल ढाई महीना बीत सेकलसे फेन नगरपालिकामा आर्थिक कारोबार कि अख्तियारी समेत नै देहल कहती वहां हुकरा दबाव देहल हुई। कालिक सांस के राजनीतिक दल हुकरन संगे हुई छलफलमा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हुकरा फे सक्कु पक्ष के बात सुनके समस्या अपनहक समेत से आयल कहती कि काम कर पर्ना कि कुर्सी छोड़े पर्ना नगरपालिका है समेत अनिर्णायक बंदी बनी नहीना बाटें कलसे राजनीतिक दल हुकन संगे के छलफल माफे कार्यवाहक नगर प्रमुख नागरजी से नगरसभामा फेर्से समेत करेपर्ना दोहोर्याएल पाँच राजनीतिक दलके प्रतिनिधि हुँक्रा नगरसभामा हुइल बजेट समेत पास हुसेकला कोर्स्याप नगरसभा सम्भव नै रहल बटैलबाट कैलालीकी डल्फिन क्षेत्रमा समेत विश्वकै दुर्लभ जलचर प्राणी डल्फिनकी गणना करगिलबा कैलालीकी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रलक मोहना पथैया काँडा कनराओ कर्णाली लदियाके तरक तटीय क्षेत्रमा यह असोज तीन गते से लैके पाँच गतेसम्म डल्फिनकी गणना करगिल बटागिलबा ऊ लदियामा विस्थो क्षेत्रमा डल्फिनकी गणना करगिल डल्फिन जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र नेपालकै अध्यक्ष भोजराज डुंगाना जानकारी कैले बाटै जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच स्थित अमौरी शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 2057 सालमा स्थापना हुइलेको महिला हुक्रनकी संरक्षण कर्तिरलक बनुवामा अब 152 जाने उपभोक्ता समूह उपभोक्ताबाट सामुदायिक बनुवा उपभोक्ता हुक्रा घाँस काठी पुस्तक कठुवा पैट्यालबाट कलेसे छोट बन रहेसे फेन वन समिति से उपभोक्ता हुक्रन के आयोजनमा सहयोग करती आयलबा शिव पार्वती महिला सामुदायिक बनवा से वन पैदावार कठुआ पुस्तक काठी बिक्री वितरण से उपभोक्ता हुक्रन के आयोजनमा सहयोग करलबा उपभोक्ता हुक्रन के आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनैनक लाग अति विपन्न उपभोक्ता हुक्रन बंगुर छेगरी के पाठा वस्तुको वितरण काम करलबा कलसे सामुदायिक बनवासे सामाजिक काममा फे तमाम करती आयलबा बनवा उपभोक्ता से समेत जीवन सहजता के लाख आवश्यकता के आधारमा सहयोग करना फे करतीबा उस्तंकर के सामुदायिक बनवासे विपन्न उपभोक्ता हुक्रन आर्थिक सहयोग अति विपन्न परिवार हुक्रन औषधि उपचारमा सहयोग करल सामुदायिक बनवा के अध्यक्ष फूलपाटी चौधरी जानकारी करैले बाटै खोजखबरमा फेन्से विश्राम विश्राम पाछ फेर्से एबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिगाप्रे एफएम
4: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
5: त एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
4: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
5: अनि सुधार घेरामा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
4: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तो यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
1: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको सम्भावित भारी वर्षा र बाढ़ी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ टिकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू नदी किनारमा नजाऊ बाढ़ीको समयमा माछा मार्न काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ महत्वपूर्ण कागजात तथा सामान सुरक्षित राखौ आफ्नो नागरिकता जग्गाधनी पूर्जा शैक्षिक प्रमाण पत्र औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ बाली नाली भित्राउन हतार
6: नगरौं। धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला। काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं। होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं। विशेष वर्गको ख्याल राखौं। बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा, बाल बालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं। आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष, नगर प्रहरी, विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
7: गगन सिंह कुवार फाउन्डेशन नेपाल गेरुवा तीन बर्दियाका आयोजनामा चौथो रक्तदान तथा निशुल्क आँखी शिविर करलबा रक्तदान कार्यक्रममा 38 प्रिन्तगर संकलन हुलबा जम्मा 2 महिला और 36 पुरूष रक्तदान करल बतागिलबा। शिविरमा 75 जनके आँखी जाँच करगिलबा। आँखी जाँच शिविरमा 27 पुरूष हो 48 महिला सेवालेहलबाट आँखी जाँच करल मध्येके 9 जहानके मोतिया बिन्दुके समस्या देखगिल बाकल से वहां बर्दिया के गुलरिया में उपचार करना व्यवस्था मिलाइल फाउंडेशन के अध्यक्ष शेर बहादुर कुवर जानकारी दिलवाटे। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 8 में वृक्षारोपण करगिल बा। स्वच्छ वातावरण धरना बढ़ती रलक प्रदूषण नियंत्रण करना वृक्षारोपण करगिले खो। वाड़ा के तमाम ठाउँमा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण करती आयल बा। ई वर्ष फे वाड़ा से वाड़ा के टोलमा वृक्षारोपण काम करल के हो। जानकी गाउँपालिका के वार्ड नम्बर वाड़ा कार्यालय के समेत सड़क हरियाली कार्यक्रम अन्तर्गत वाड़ा के भोक्सी पहाड़ीपुर झाड़ूपुरमा वृक्षारोपण करगिल। वाड़ा अध्यक्ष तीर्थराज उपाध्याय जानकारी दिले बाटे वाड़ा से वृक्षारोपण के काम हे नियन्त्रणता देना जनाइल बा। कर्णाली नदी किनारमा महिला के शव भेटाइल बा। कैलाली के टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जनशक्ति सामुदायिक बनुआ स्थित के कर्णाली नदी किनारमा काली महिला के समेत शव भेटाइल खो। करीब 30-32 वर्ष के जस्ते देखगिल। नदी किनारमा भेटाइल महिला के शव सरल अवस्थामा फेर रहल प्राणी से जनाइल बा। तर जीन्स पेन्ट लगाइल उस्तक उज्जर मोजा लगाइल अवस्थामा भेटाइल। सबके पहिचान हुइने सेकल सब टिकापुर अस्पतालमा धरगिल। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरके प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रकाश ताङ्गी जानकारी दिएबाट सामुदायिक बनुवाके पदाधिकारी से नदी किनारमा सब देखल पाछे काली बिहान 11 बजे प्रहरी खबर गरल रह। ये समाचार संगे खोज खबर वाइल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। मौसम संबंधी पूर्व सूचना है ध्यान में दई के काम करना मौसम बीच से नागरिक फुकरण आग्रह। पूर्व पश्चिम महासेना के हेलीकॉप्टर विपद पति कार्य के तैयारी अवस्था में भारी वर्षा के संभावना रलक ओर से सतर्कता हुई न। कैलाली के तमाम निकाय बीच छलफल। शिव पार्वती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आय आर्जन में सहयोग करती सहयोग पाइल पाछे उपभोक्ता खुशी। ओ कैलाली के डल्फिन क्षेत्र में डल्फिन के गणना ओ आहार के समेत सर्वे कर गिल। अबकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकिया के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका विदा।

0: बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दे भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अजी गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छेकले कत्रा सुघर बनाएको बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
4: संचालक आरती चौधरी, संपर्क नंबर 98624-70483।
5: के तपाईं चाया, डन्डीफोर, दाद, एलर्जी, कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
6: अब टिकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
5: यही असोज 10 गते शनिबारका दिन
6: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
5: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने, साथै प्रत्येक दिन MBBS फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
7: डाक्टर आउने दिन यही असोज 10 गते शनिबार।
6: स्थान मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, कहा कना हो कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन। ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828। आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
2: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्त बनी हो न ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: भारती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
1: संचालक आरती चौधरी, संपर्क नंबर 98624 70483।
2: हार्दिक सुनचाँदी पसलमा छत्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चापकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: हार्दिक सुनचाँदी पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, संचालक शंकर साहु, सम्पर्क नम्बर 98 48 42 91 74।
4: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध।
5: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा वासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बांध देवी, सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी, साथ ही सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पड़ना बा।
4: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।
6: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
6: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
7: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
6: अब त म ढुक्क।
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
7: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट पाटी गतिलो ठाव से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
4: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्टपुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा संचालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 98685510000।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर से मई गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा ब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका में स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण बारे छलफल राष्ट्रीय बीचमा कर्णाली किनार मन पूर्व तैयारी सामुदायिक वनोमन 2500 बिरूवा व बटनपुर सड़क मन सो प्लांट वृक्षारोपण ओ अविरल वर्षा के संभावना पाछ टीकापुर व जानकी के सबको विद्यालय में असोज 9 गते विदा। मौसम विज्ञान विभाग असोज 9 गते थेसे 11 गते समय सुदूरपश्चिमफे भारी वर्षा के पूर्वानुमान करलपा छ। बाढ़ी से खतरा हुई सेकना कर्णाली किनार के बस्ती में पूर्व तैयारी शुरू हिलबा। कर्णाली मन बाढ़ी के सतह बढ़ल से प्रभावित हुई सेकना टीकापुर नगरपालिका ओडा नंबर 7 और 8 में सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति ओडा समिति सक्रिय हुई कलशे सशस्त्र प्रहरी सहयोग करती रह। बिहीबार बिहान का सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म खखरौला ओडा नंबर 7 और 8 के स्थानीय ओडा नंबर 8 के पुडाल टोल के दुई ठावन बोरामन माटी भर्कन तटबंध बनैलवा लड्या बहरल से सती कर्णाली सामुदायिक वन क्षेत्र से बाढ़ी पैठना अनुमान कर्क यहां के 400 जत्रा स्थानीय परिचालित होकर तटबन करगिल कोडा नंबर 8 के उड़ाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुला बटुला कर्णाली लद्देक सतह बहरल से मोहना और काढ़ा लड्या ठुनकन डुबान पर्ना ओडा नंबर 7 के वैदिकी समुदाय आवश्यक पलक बेला उच्च घर में न सरना कैकन तैयारी करगिलक समुदाय के विपद व्यवस्थापन समिति के सचिव भोजराज ढुंगाना बटुला वस्तक ओडा नंबर 8 के स्थानीय ढनसिंह साउट कर्णाली लद्देक बाढ़ी सती कर्णाली वन क्षेत्र से पटना खतरा रहलक ओ आब बाहरी घेरा में थपगिलक तटबन सेफे निरोगगिल पाछ ढ्यूर क्षति हुई संभावना रहलक बटुला टीकापुर नगरपालिका के ओडा नंबर 5-7 के वर्षा के पानी झरना ओडा नंबर 8 कर्णाली के बाढ़ी पैठलक झन खतरा पर्ना करलबा यी क्षेत्र मन 2066-2078 साल में फे भारी भारी बाढ़ी आकन भारी धनजन के क्षति हुई करलक मन यह वर्ष फे पूर्वानुमान अनुसार के पानी पर्ल से ढेर नोक्सानी हुई सेकना हुईलक मर्से मानवीय क्षति हुईने देह कैकन तैयारी हुईलक 59 वर्षीय स्थानीय टीकाराम चौधरी बटुला सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवराज विष्ट बाढ़ी से प्रभावित हुई सेकना समुदाय सचेत रहलक कौन समस्या पर्ल से संपर्क कर कैगिलक बटुला स्थानीय तटबन बनागिलक ठावन टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला फे अवलोकन कलवा बास्तोला हना प्रहरी उपरीक्षक विष्ट डगरी मन बाढ़ी बग्ना हुईलक वर्षे बाढ़ी रहलक बेला भारत से नेपाल प्रवेश कर व्याहकन के लिए डगर मन 2 किलोमीटर जत्रा डोरी वाहन का ढरना वो वाकर सहायता लेकर आवत जावत करना तैयारी हुई रहलक बटुला टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 5, 6, 7, 8 कर्णाली पथरिया काड़ा व मोहना लद्देक बाढ़ी से प्रभावित हुईना क्षेत्र हुई यहां के बस्ती में न उच्च घर बनागिल वा कलशे उच्च स्थल पहचान के बारी आईना निश्चित हुईलवा तैयारी के संग यहां घर मन बैठना तैयारी कैगिल्वा कर्णाली लद्देक बाढ़ी चिसापानी गेज मन सूचित हुईलवा तल्लो समुदाय के मनिन्ह साइरन बजाक सूचना देना व विभिन्न समिति हुक्र सक्रिय हुईना कैक पूर्व सूचना प्रणाली बनागिलक ओ जोखिम पूर्वानुमान कैखन असोज 9 गते शुक्रवार नगर के विद्यालय के विदा करगिलक टीकापुर नगरपालिका के विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बटुला टीकापुर नगरपालिका मन स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण बारे छलफल हुईलवा प्रैक्टिकल एक्शन नेपाल भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप के सहकार्य मन टीकापुर नगरपालिका के स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण करगिलख कार्यशाला गोष्ठी मन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली के सभापति लोकराज जोशी विपद जोखिम हन वित्तीयकरण व जोखिम हस्तांतरण कर आवश्यक रहलक बटुटी विपद मन राहत देख कलहक समाधान निहुई नाहुलक मोर्से जोखिम हस्तांतरण करना कैक काम कर आवश्यक रहलक बटुला विपद व्यवस्थापनके लागि आठौं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हुकन मन काम कलक मन जोखिम घटाइसेक जिना बटुटी स्थानीय सरकार विपदके बेला निजी क्षेत्र समुदाय व नागरिक संचार दार्ती निकाय प्रादेशिक सरकार संघीय सरकार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अत्यावश्यक सेवा व विज्ञ लगायतके सहयोग लिहपना बटुलबाट टीकापुर नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृता ममता बास्तोला विपद व्यवस्थापनके लागि एकीकृत योजना बनैलसे बनलसे पालिका मन सहयोग हुइना बटुलबाट वहाँ स्थानीय तहमन योजना छिटिक रहलक कुर्से काम करबेर हुइना करलक आप एकीकृत योजना बनलसे पालिका हान सहज हुइना हुलक कुर्से संघ संस्था पालिका हान कलक सहयोगके लागि धन्यवाद देलबाट भारी वर्षा सम्बन्धी सूचना अनुसार विपद व्यवस्थापनके लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापनके निर्णय ओ नगर स्तरीय ओडा स्तरीय समुदाय स्तरीय विपद समिति हुक्र सक्रिय होकर काम कर शुरू करलबाट टीकापुर नगरपालिका के वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी अब टीकापुर मन भारी वर्षा हुईना सूचना हुईल पाछके तैयारी करतीरलक बटुटी जोखिम हुईलक ओडा नम्बर आठ में जैविक तटबन्य निर्माण हुईतीरलक ओडा नम्बर एक में ढल सफा कना लगायत के काम हुईतीरलक बटुलबाट विपद पूर्व तैयारी के लिए पालिका कर निषेकना जोखिम रहलक बस्ती सरना तैयारी करगिलक बाढ़ी और डुबान के समस्या समाधान के लागि सबको क्षेत्र के सहयोग आवश्यक रहलक बटुलबाट टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर पाँच के कर्णाली तटीय क्षेत्रमा रहलक तीनठो सामुदायिक वनोमन वृक्षारोपण करगिलबा प्र्याक्टिकल एक्सन ओ बी ग्रुप के सहयोग तथा टीकापुर नगरपालिका के समन्वय बन टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर पाँच के टीकापुर नर्सरी भैरवनाथ वन भगरेहा वन संरक्षण समिति मन 2500 बिरुवा वृक्षारोपण करगिलक जनागिल्बा नदी तटीय क्षेत्रमा रहलक यी वनोमन बाँस सागुन शीतल चिनी तेजपत्ता लगायतके बिरुवा लगागिल्बा सामुदायिक वनके उपभोक्ताके सहयोगमा वृक्षारोपण करगिलक हो वस्तकन वडा नम्बर आठ मन 200 ट्री गार्ड सहित 300 प्लान्ट फूल बटनपुर सड़क मन लगागिल्बा यहाँ टोल विकास संस्था के सक्रियता में वृक्षारोपण करगिलक हो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण नदी कटान नियंत्रण में सघाई पुरैना ओ सामुदायिक वन के आमदानी बढ़ेना वन समिति के माग अनुसार बहुउपयोगी बिरूवा वितरण करगिलक बी ग्रुप से जनागिल्बा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पा छैन निवाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन एक गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस्या गाडी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
6: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचना अनुसार असोज 9 गते से अति भारी वर्षा हुना मापन हुइलकुंसे टीकापुर नगरपालिका नगर क्षेत्र भित्र के सक्कु सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा एक दिनके लागि विदा दिन निर्णय कलबा। नगरपालिका बाढ़ी दुवान लगायतकै विपत्की जोखिम बरसेकना बटुटी 9 गते विद्यालय बन्द धरना निर्णय कलक हो। नेपाल मौसम विज्ञान विभागकै मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जारी कलक विशेष बुलेटिन मन असोज 9, 10 और 11 गते देशभर वर्षा के उच्च संभावना रहलक। पूर्वानुमान करल पाछ संभावित बाढ़ी तथा डुबान के जोखिम हन ध्यान में धरती विद्यालय में विदा देना निर्णय करगिलक नगरपालिका से जनागिल्बा। नगरपालिका ऊ विदा हन विद्यालय पैना स्थानीय विदा मन समय जनकर समेत अनुरोध कलबा। अनन्त चतुर्दशी व्रत के उपलक्ष्यमा असोज 9 गते एक दिन जानकी गाउँपालिका फे स्थानीय विदा देलबा। जानकी गाउँपालिका थारू समुदाय के अनन्त चतुर्दशी व्रत के अवसर मन एक दिन स्थानीय विदा देना निर्णय कलबा। उदिन गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय, ओडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्था बन्द रहियाबाट सम्बन्धित सकुनह जानकारी गराइना उद्देश्य लिएकै गाउँपालिका असोज 8 गते सूचना प्रकाशित कर्लबा। गाउँपालिका के अनुसार थारू समुदाय के धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व अनन्त चतुर्दशी के सम्मान स्वरूप स्थानीय विदा देना निर्णय गरिगिलक हो। बाढ़ी पहिरो लगायतकै विपद तथा जनस्वास्थ्यमा परसेक्ना जोखिममा मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय देशभरकै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था आवश्यक तयारी मन रह निर्देशन देलबा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार यह असोज 9 गते थेसी 11 गते सम्म देश के विभिन्न स्थान में भारी थेसी अति भारी वर्षा के पूर्वानुमान करगिलबा। हाल विभिन्न स्थान में वर्षा हुई रलक अवस्था में संभावित जोखिम प्रति सतर्कता रह मंत्रालय अनुरोध करलक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय निरन्तर वर्षा के कारण बाढ़ी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप उत्पन्न होकन दुर्घटना चोटपटक तथा अन्य जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ़सेकना हुइलक महर्से सक्कु अस्पताल व स्वास्थ्य संस्था आवश्यक जनशक्ति औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा रह आग्रह कलक हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा असोज 9 गते से 11 गते सम्म नेपालमा धेर भारी वर्षा थिए अति भारी वर्षाको सम्भावना रहलक बटवेटी अलर्ट जारी गर्लबा। सोही सूचनाकै आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेरि उच्च सतर्कता अप्नाई मौसम कार्यालय स्थानीय तह लगायत विभिन्न संघ संस्था आग्रहकर्तीबाट महाकाली बेसिन फिल्ड कार्यालयकै कार्यालय प्रमुख ई संजय कुमार शाह मौसम पूर्वानुमान महाशाखासे जारी गर्लक सूचना अनुसार सुदूरपश्चिमकै 3 जिल्ला हाई अलर्टमा रहलक बटुलाबाट। उहाँकै अनुसार दार्चुला, बाजुरा व बझाङ हन हाई अलर्टमा धर्गिल बा यी जिल्ला के सँग प्रदेश के अन्य सक्कु जिल्लामा फे सतर्कता रह आवश्यक रहला उहाँ बटुलेबाट ओह अनुसार कार्यालय विभिन्न माध्यम से सुदूरपश्चिम के जनता हाना पूर्व सूचना दिन काम करतीरलक उहाँ बटुलेबाट उहाँ प्रदेशमा बाढ़ी के पूर्व सूचना दिन 36 थो रडार लेवल सेन्सर जरान करगिलक बटुलेबाट जिसे पानी के बहाव बढ़ल या घटल के बारे में हरेक 10-10 मिनट के तथ्यांक देना करट जी हेन जनता सजिलो मोबाइल से हार सेक्ना उहाँ बटुलेबाट उहाँ जोखिम बहरल में मोबाइल मन मैसेज फे पठेना बटुलेबाट उहाँ दान्चे समय मन धीर पानी परबेर जोखिम बढ़ना हुईल कुर्चे असीन बेला सजगता अपनाई आवश्यक रहलक बटुलेबाट असीन बेला जोखिम पहचान करगिल क्षेत्र जनता सुरक्षित ठावन स्थानांतरण कर आवश्यक रहलक उहाँ बटुलेबाट मौसम पूर्वानुमान महाशाखा असोज 9 थे 11 गते गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशमा धीर भारे तथा अति भारे वर्षा ओ मधेशकोशी बागमती सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फे भारे थेसे अति भारे वर्षा तथा कर्णाली प्रदेशमा दान्चे वर्षा के सम्भावना रहलक जनागिल्बा। खोज खबरमा एक घडीक विश्राम विश्राम पाछै निनिबाटी सुन्ति रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्यालढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्यालढोका बनाउनुहोस् न।
9: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्यालढोका?
10: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
9: अब त म ढुक्क।
11: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट,
10: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
12: नेपालगंज मेडिकल कलेज मा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
13: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार का दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर मा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन लगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
13: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसके स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो ओ रसुवा स्थित भोटेकोशी लडियामा अहिलेक बारिसे प्रभावित तथा पीड़ित ठोकनके लागि प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमा 25,000 रूपियाँ सहयोग कर्लबा। सोभियो बारिसे प्रभावित परिवारके उद्धार तथा राहतमा सहयोग पुग्यो कना उद्देश्य लिएका ऊ रकम कोषमा जम्मा कर्लक हो। सोभियो अध्यक्ष सन्तोष पन्त विपदके बेला पीड़ितके सहयोगके लागि आफन उहर्से सक्दो सहयोग कना सामाजिक दायित्व रहलक बटुलेबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन हुन प्रभावकारी बनाई पूर्व तयारी, पूर्व सूचना प्रणाली ओ पर्याप्त बजेट विनियोजनमा जोड़ देगिल्बा। आयोजित प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रममा विपद जोखिम व्यवस्थापन ओ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनके विषयमा छलफल गर्दै असीन आवश्यकता आउल्या गिलक हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकै आयोजनामा तथा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघकै प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्य एकीकरणकै लागि अन्तर पहिचान विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बजेट सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिगिलक हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री खुशीराम डंगौरा थारूकी अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रमुख अतिथि रह कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदकै विज्ञ सदस्य डाक्टर गंगालाल तुलाधार प्रदेश सभाकै उपसभामुख कोइली देवी चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दमन बहादुर भण्डारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकै उपाध्यक्ष गोकर्ण भट्ट लगायतकै विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाकै प्रतिनिधि व पत्रकार सहितकै सहभागिता रह कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत 10 वर्षमा विपदकै कारण भारी मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुइलक बटुइलबाट उहाँकै अनुसार 2072-2082 अवधिमा प्राकृतिक विपदकै घटनामा 5,195 जनाकै ज्यान मृत्यु 517 जना बेपत्ता 15,751 जना घाइते हुइलबाट ऊ अवधिमा करिब 2,02,000 सेफे धुर परिवार प्रभावित हुइलको विपदकै कारण 32,55,00,000 रूपियाँ से बढ़ीकै आर्थिक क्षति हुइलक उहाँ बटुइलबाट। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर नगरपालिकामा स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण बारे छलफल राजकीय बीचमा कर्णाली किनारमा पूर्व तयारी सामुदायिक वनमा 2,500 बिरूवा व बटनपुर सड़कमा सो प्लान्ट वृक्षारोपण अविरल वर्षाकै सम्भावना पाछ टीकापुर जानकी केशवको विद्यालयमा असोज 9 गते विदा लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र औरत समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सक्दी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फी विदा हेतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।
16: बेवारी से सब भेटिएको सूचना मिति 2083 साल असोज 7 गते बिहान 11:10 बजेको समयमा जिल्ला कैलाली टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मूलपानी स्थित कर्णाली नदीको किनारमा नामथर बटन खुल्न नआएकी उचाई 5 फिट 6 इन्च तल्लो शरीरमा कालो रंगको जीन्स प्यान्ट सेतो रंगको पेन्टी दुवै खुट्टामा सेतो रंगको मोजा लगाएकी बायाँ हातमा रक्षा डोरी बाँधेकी कालो लामो कपाल भएकी शरीरका विभिन्न भागमा किरा औंसा परी सरी गली गई छाला को मध्यम शरीर भएकी अन्दाजी 30-32 वर्षको जस्तो देखिने एकजना महिलाको मृत लाश फेला परी टीकापुर अस्पतालको सबगृहमा राखिएकोले चिन्नु हुने महानुभावले प्रहरीलाई जानकारी दिन वा सम्बन्धितले बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ।
17: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
18: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
17: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000।
19: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मनै घर सिजार सेकल
20: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
19: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
21: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
22: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
23: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
24: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
25: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास
1: ग्यास चुला, नलका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
2: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
23: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
3: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एब्रिला टेरस।
4: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एब्रिला टेरस।
5: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
25: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484648673 र 98164602004।

0: सट्टा सी अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि सञ्चालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: हार्दिक सुनचाली पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगल सूत्र, चापकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: हार्दिक सुनचाँदी पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, सञ्चालक शंकर साहू, सम्पर्क नम्बर 98 48 42 91 74।
2: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हेर्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौ। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
3: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्भे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हात जोड़नी सेवा, टूटल हात जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98 48 42 73 59।

0: जाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नहीं ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिए परल है समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर दे मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाहे ये बाल विवाह कर नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डायो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थी उ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद और 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकर ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश।

0: कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा सुगर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: अत्यन्त जरुरी सूचना। मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र मन बाढीकै जोखिम रहल कुइलक महर्से सक्कु गाउँपालिका वासी हुन हार्दिक अर्जी गरती। आपन खाद्यान्न सामग्री, महत्वपूर्ण कागजात, नगद तथा जिन्सी सामान, लत्ता कपड़ा, दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँ मन धर्बे। घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसेकना हुइलक महर्से आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँ मन बैठक लागि अनुरोध गरती। सम्भावित बाढी के जोखिम हन मध्यनजर करती, समयमा सुरक्षित रही, सतर्क रही व एक और जान हन सहयोग करी। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीनबाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहिचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलोजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-8 था